कदमे आ तुम सब कदमे हद गुबान ताले दुनिया कई कलमे मर युकुम युकुम सो मंदई पगमे नबर दामाए मर हायुकमे